मुरचरनी मथा मुरचरनी मथा उस्तत मन में करनकार कर्मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रस

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आने वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तू ही मौत नू दूर समझदा है, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहा ने हाथ जोड़े और मेरा देसाई आप कृपा करो आप दसो मौत नू कितने को नेड़े समझते हो। धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनाशरी राग विच शब्द उचारण कीता आख्या हम

बहु परपंच कर पर धन लियावे। सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे फूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी पहले। जेडी पापा दी खटी तू खट रहा है, जिना विच्चों तेरे अनेकां रिश्तेदार, बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत न बेड़ा तेरे जी पैरी दे। एदे अमोलक श्वास जो वाहिगुरु ने तैनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया। जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नूं भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया, जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलने। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़े है, बड़िया मेहनतां कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग ता लैन दियो, आ मैनू 24 घंटे दे दियो, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ए धन उथे चलदा नहीं, तू जिथे गल कर रहे उथे तां नाम दा धन चलदा है। इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ श्वास होर दे। आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन दी कमाई जितना भी मैं कमाया है मैं सारा ही दे दिंदा हां, मैनू कुछ श्वास उस दे बदले।

नानक सच्ची पातशाह बख्शिश कर दिया न भाई पही प्राप्त मानस दे हुरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया ए प्राप्त होए हन तेनु अमोलक स्वास ते जितने तक दुनिया विच तू

सच एकंकार सतनाम करत पुरख निर्भव निर्वेह अकाल मूर्त अजूनी से भंग गुरु प्रसाद जप आद सच गौ

जब लवनी भाग लीलार तुझे तब लव भरते फिरते बहुत आयो कल खोर समुद्र में मूड दुखे कब हूं मिट है नीरे पछतायो सत विचार यह मथुरा जगतार्न को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ धन गुरु नानक पातशाह धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है और देने कोई संकट भी आएगा तो 84 लाख जून तू बच जाएगा तो प्यार न सारे आखो धन गुरु अर्जुन देव गंगा जी असी गुरु की संगतों के सेवादार पातशाह हुक्म करो हलो कहने लगे गंगा जी फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया पर कड़ा प्रसाद ही देख उस आटे भी नहीं बनाए अज गुरु की संगता की सेवा करनी है अपने हथी पहला चक्की पी दैनी गुणा वाली मां जगत माता माता गंगा जी अज गुरु की संगतों वास्ते आप चक्की पी आटा तैयार किया साहबा ने अपने हथी कड़ा प्रसाद की अमृत देख तैयार सोने थाल विच पाई उत्ते चिट्टा रुमाल पाया माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसे सिख नूं बुलाइए हजूर कह लगे नी गंगा जी असि आप ही अपने चेपे संजय पातशाह जी कड़ा प्रसाद जी दे अपने पवित्र पावन शीश से चादर की हुकम मारी तुरन लगे माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है हजूर कह लगे गंगा जी जे संतां की सेवा करनी है तुसी भी ठंडे जल की गागर पर जिथे संगत नूं भुख लगी उसे प्यास तो मात गंगा जी ने सिर के उत्ते गागर जल की रख ली हजूर तुरन लगे कह लगे गंगा जी पखा भी नाल लै लो गर्मी बड़ी तुरिया जाते अज पंजवां गुरु नानक सुरती नाम सारे करो दर्शन से प्यार नाल फिर आखो धन गुरु रात दस गुरु तुरिया जाता है सिखा ने दर्शन करो नदी तो रोज तुरती है समुद्र को मिलने वास्ते पर समुद्र कदे नहीं मिलता समुद्र कदे नहीं आता पर तक लो प्यारी सात संगत नदी रूप सिखी जे गुरु के दर्शनों तुर पैंदी है जे कोई रुकावट पै जाती है तो गुरु आप ना उतर अद्धी रात गंगा जी सुना ना मेरी सिखा के प्यार वाली आवाज भावें उन्होंने प्रशादा नहीं दे ठंडा जल किसी ने नहीं पिलाया पर फिर भी गुरु की संगत प्यार भी किस तरह अरदास कर गंगा जी सुनो साहबा ने बरसित की थी माता गंगा के कन्ना में प्यार की आवाज आ रही है केड़ी सारी संगत रात का समय प्यार इजरी है ते अरदास कर रही है मेरा

का मंदिर है वो, जैसे आप सत्या जोड़े ने रखा तो नहीं करता अजय पाओ कुटी भी सहज जी कह लगे गंगा जी जी बात है उसी का महिला नु जाओ साई जी आप ही चलो कदम कह लगे थोड़ी जी सेवा बाकी रह गई है वो भी कर अनुप्रवर्जन दे साथिया संगत विचो नगदे जथेदार दे कोल आके खड़ो गए प्यार नाल किया जथेदार जी गुरु किया संगता दे जोड़िया वास्ते सेवादार की लोड़ है ना दास जथेदार सके कम और गुरु के सिखा एक ही वचन की तेन जोड़िया ना सेवादार बिठाई नहीं नहीं तू अगे बड़ी सेवा की रात रात शादी देख चुका है ठंडा जल पिलाया सारी रात पक्का करता रहे तू तो कोई धर्म अर्जुन देव पातशाह जी का पूर्व सिख है प्यारे तेन इतने नहीं बिठाना तेन नाल लैके चलेंगे ते गुरु अगे अरदास करांगे पातशाह पहली जी तेरे दर्शन करने वास्ते आया होर कुछ नहीं मंगते जो कुछ सिख नूं दिता जे साडी चुनी तेरे सबके तो साढ़े गुना बखे जाए कह लगी जथेदार जी मैं इतने मजबूर किया तो प्यारी सास ने जी सारी संगत ने जोड़े उतार दिते संगत तो हरिमंदर साहब जा रही है तो जोड़िया का राखा कौन बैठा है प्यार आखो पहनो संगत अंदर पहुंच साहब श्री गुरु साहब जी के दर्शन होए पर पंजे पातशाह के दर्शन बाबे बुढ़े ने पूछा बाबा जी पंजे पातशाह कितने हम दर्शन करिए बाबे ने किया साहब संगत जी पंजे पातशाह का रात दे पितली साहब गए श्री अमृतसर गुरुद्वारा पितली साहब जी ने सूची से पड़े पुतली घर के कोल गुरुद्वारा स्थान इतिहासिक जो साखी पुतली साहब पुतली घर के नाल पिपली साहब गुरुद्वारा संगत ने किया बाबा जी पिपली साहब असी रात पिपली साहब रहे सानू तो गुरु के दर्शन नहीं हो क्योंकि संगत पहले ही दर्शन करवाते गुरु की सौ सुन के दर्शन बाबे बुद्धे देखे नहीं राती श्री हरिमंदर साहब पहुंच पे 11 का टाइम साहब जी ने कहा सी बाबे यार गुरु दिया संगत दूरों उतर के आईया हर कुछ मिला तो उतारा किया गुरु की संगत भुखी देते मैं कहा सी पातशाह हुक्म करो जाके लंगर छका दें पर पंजे पातशाह मने नहीं कह लगे बाबे यार तू तो रोज गुरु की संगत की सेवा करना है अज इतना सानू दे रात दिन पितली साहब एक दूजे के मुंह वाल वेख लग गया जथेदार ने कहा बाबा जी पंजे पातशाह तो नहीं गए सिख जरूर गया हूं एक प्रचार भी छकाया जल भी पिलाया पक्षा भी करता रे बाबा बुढ़ा जी कह लगे प्यारे हो सिख नहीं सी सिखा का मालिक बाबा जी किस तरह हो सकता है बाबे ने कहा पता हूं उसे कितने बड़े निराश एक दूजे के मुंह वाल तके तो उदासी भी जाके कह लगे बाबे हूं तो जोड़िया का राखा बिठा गया बाबे बुढ़े दिया कुपाई और कह रही साध संगत पंजे गुरु अर्जुन जोड़िया का राखा बिठा बाबा बुढ़ा जी भजे जाए मगर संगत भी भजी जाए पहुंच गए इधर मेरे पंजे पातशाह की कर रहे हैं एक जोड़ा चुक लेंगे उन्होंने साफ कर लेंगे और धूड़ मथे दे किसी अगम्भी खेड़े के नाल पढ़ते हैं

0: मत को परम भूले संसार निगुरे का है नाओ बुरा।
1: जदों गुरु अमरदास पातशाह जी नूं ए एहसास होया, एहसास दिलवाया उस पंडित ने जो कि इन्हां दे नाल तुर रहे सी, जा रहे सी। इन्हां दा नां उस वेले अमरू है, अमरू करके लोकी जानते हैं। यह हरिद्वार दी यात्रा ते जांदे हन हर एक साल ते सात संगत एक पंडित जो इन्हां दे नाल तुर रहे रस्ते दे विच बैठे ते पंडित ने कहा भाव कि जदों ये प्रसाद देन लगे अमरू जी ते उसने पूछ लिया तुहाडा गुरु कौन है। ते अमरू जी ने आख्या भाई मेरा तो गुरु कोई है ही नहीं। ते पंडित ने साफ इनकार कर दिता, कहा नहीं तेरे हद का प्रसाद नहीं लेना, तेरा तो कोई गुरु ही नहीं, तू हाले तक गुरु नहीं धारण किया, ये तेरी यात्रावां असफल हैं, बेकार हैं, क्योंकि तेरा गुरु कोई नहीं है। मैं तेरे हद का प्रसाद नहीं लेना, जिन्ना देर तक मैं तेरे संग रहा, तेरे नाल रहा, ये मेरा टाइम भी व्यर्थ गया, क्योंकि मैं निगुरे पुरुष दे नाल रहा। ते साध संगत जदों मन दे विच ए गल आई ते अमरू जी सोचन लगी कोई गुरु धारण करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि बिन गुर मुकत ना पाईए पाई, बिना गुरु तो मुक्ति ही नहीं। ते फिर ये यात्रावां इस सब असफल होनगियां, बेकार होनगियां, क्योंकि गुरु कोई नहीं है। ते गुरबाणी सानू बार बार समझाउंदी है साडा तां गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब है, जिस दे लड कलगीधर पातशाह ने सानू लाया। ते गुरु होंदियां ते फिर असी संगना करिए, गुरु होंदियां हजूर विच ना बैठिए, ए तां होर भी त्रिग ए अजीबिया, ए तां फिर उस तो भी ज्यादा है, क्योंकि जिन्हां दा गुरु है ही नहीं उन्हां दी गल कोई नहीं, जिन्हां दा गुरु है ते फिर गुरु दी हजूरी विच पहुंचन तां ही है ना। जे घर बैठिया ही सब कुछ मन दे विच सोच लिया, इत्थे ही मत्था टेक दिंदे, कई बंदे कह दिंदे इत्थों ही मत्था टेक दिंदे जी, सी इह गल नहीं है। असीं पड़भागे हां गुरपुरा जिन सिमरिया सही पए निहाल, गुरपुरा पेटियो वडभागी मने पया प्रगासा। आओ निगरी पुरुष दा यह हाल है ते आओ वडभागियो, असि सारे गुरु वाले हां, काश ए गुरु कृपा करदा रवे साडे ते, विसरना ही दातार अपना नाम देओ, नाम दी बख्शिश करदा रवे, सदा सानू अपने संग लाए रखे, लड़ राए रखे।

अतः पाते जब मरते सक्यात तिन रजाल पुभने गुरु अमरदास सो प्रसन्न जाए। ये शब्द पटा दी सुइया विच है। हट कह रहे ने तन हर भूत बसो रोमावल कुसुम बसंत गलंत ना आवे कणियां पैंदियां ने बारिश हुंदी है उन्हां कणियां नूं को गिण नहीं सकदा। बसंत दी रुत विच फुल खिड़दे ने किन्नी बृहस्पति है संसार विच किन्ने फुल ने को गिण नहीं सकदा। कन हर बूंद बसो रो मावल कुसुम बसंत गणंत न आवे रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे सूरज दिया किरणा को गिण नहीं सकता। समुद्र दा पेट अजे तक को था नहीं पा सकिया गंगा दे विच तरंग उठदे ने को गिण नहीं सके। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन फल उन्हें जो गावे जे शिवजी का ध्यान मन्या हुए रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के उस ध्यान दे बल नाल कोई कणियां गिण लवे किनिया पईयां बारिश विच सतगुरु दे बख्शे हुए ज्ञान नाल सतगुरु रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर को सतगुरु दे बख्शे हुए ज्ञान नाल कोई ये गिण लवे सब कुछ सूरज दियां किरणा गिण लवे तिरंग गिण लवे कणियां गिण लवे ये ते हो सकता है पर ऐ गुरु अमरदास महाराज कीजे गुरु नानक पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे तेरी उपमा कोई कह ही नहीं सकता।

फिर पटके रे ने तेन दुख ने भुख तिन निधन नू कही। उस इंसान नू उस नर नू कोई दुख ते भुख वापर नहीं सकदा, वो निर्धन नहीं रह सकदा, वो निर्धन नहीं रह सकदा। तिनर शोक न हुए तिनर से अंत न लईए, उथे शोक नहीं हो सकदा उसने। तिनर से अंत न लईए तिनर सेव न करे, वो किसी का गुलाम भी नहीं होगा। तिनर सह सहज समपे, वो गुलाम भी किसी का नहीं होगा, ते हर एक विच उनू वेखूगा। सहज समपे तिनर दुलीचे बह है, दुलीचे का अर्थ है दुलीचे का गलीचे, उसका स्टैंडर्ड एडा उच्चा हो जूगा गलीचे विषय होंगे। तिनर दुलीचे बह है तिनर उथप बिथप है, उसके इनी शक्ति आ जूगी वो राज खो भी सकूगा तो राज दे भी सकूगा, उखड़िया होया नू बसा भी सकूगा। तिनर दुलीचे बह है तिनर उथप बिथप है, सुख लह है तिनर संसार में, इस संसार विच ए सारे सुख उन्हों मिलन। अप है पट रिप मद ते सक्याथ तिनर जालप बने, किनू ये सुख मिलनगे किनू ये वड़ियाइया मिलनगियां। गुरु अमरदास सो प्रसन्न जे जिदे ते तीजा गुरु नानक गुरु अमरदास महाराज जी ते प्रसन्न हो जाएंगे, ये सारे सुख ये सारिया

होए बिरकत बनारसी रहंदा रामानंद गुसाई अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नावन ताई ओ स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के गंगा ते इशनान करन जांदे ने क्योंकि रब दे प्यारे रात सौंके नहीं बतांदे।

अपना परना मोढ़े ते मारिया। गंगा घाट इशनान करन वास्ते तुर पए ने जदू स्वामी रामानंद गंगा घाट पहुंचे ता

समा बीते स्वामी रामानंद एक दिन इशनान करके अपने डेरे आए। ए मूर्ति पूजा नहीं सन करते, कमरे का बुआ बंद करके, अखां बंद करके, मन करके अपने ठाकुर नूं इशनान कराया करते सन। और एक दिन इशनान करा रहे ने ठाकुर नूं, कपड़े पवाए, सिर ते मुकट रखिया, अचानक ख्याल आया मना, सिर ते मुकट पा दिता है, हार पाण दा ते ख्याल ही नहीं रहा, हार छोटा है, मुकट तो पह नहीं सकता, मुकट लावां तां बेअदबी हुंदी है। जिवें असी किसे दे गल हार पाणा होवे, हार छोटा होवे, पग ला के गल विच हार नहीं पाईदा। इसे तरह स्वामी जी सोची पै गए, हार छोटा है, मुकट तो पह नहीं सकता, जे हार ना पावां पूजा पूरी नहीं होंदी। इन्ने नूं कन्नां विच इक आवाज पई, स्वामी जी हार छोटा है, गंढ खोल के हार दी, हार गल विच पा के फिर गंढ बन दे। बिरती खुल गई, स्वामी जी बाहर आए, बुआ खोलिया, बार की देखते ने भगत कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे, ओए तू कौन है जिन्ने मेरे मन की गल जान ली? ते कबीर साहब कहंदे ने, स्वामी जी मैं आप दा सेवक कबीर हां, अमृत वेले गंगा दिया पौड़ियां ते सुता सा, ता तुसी कहा सी उठ राम के राम को, ओदू दा आप दा सेवक बन गया। ते स्वामी रामानंद दियां अखां विच अथरू आ गए, मन पार आया, उन्हां कबीर नूं बाहों फड़ के अपने गल नाल लगा लिया, ते नाले कहंदे ने

जिस तरह कोई बच्चा रिड़दा होया किसे चीज नूं पकड़दा है। नामदेव जी ने अग विच हथ पाया ते मां गोना बाई एक बारी कम उठे।

अगर कोई बनारस जाके तप करे उल्टा लटके तीर्थां ते जाके मरे अग्नि विच अपना शरीर साड़ देवे काया

और सामने पहाड़ से शिवजी भगवान छोटे दे रूप में जिसनों हिंदी में सांड कहते हैं रूप में भजे आए तो वो जड़ा पहाड़ से उहदे विच समा गए ते शरीर का पिछला हिस्सा उस पहाड़ के बाहर है जिदी के

कोई हाथी घोड़े दान करे अपनी औरत भी दान कर देवे घूम कहते ने धरती कोई धरती भी दान करे और एहो जे दान

क्यों कि परमेश्वर परमेश्वर का नाम सब तो वड्डा है। ए तीरथ ओदे नाम करके ने, ए दानपुन ओदे नाम करके है, फिर नाम दे बराबर कोई किस तरह हो सकता है। इस वास्ते के है ऐ भाई, उस परमेश्वर का नाम जप, ओदा सिमरन कर,

देव बदलावन दे, मैं ते इक रमैया दा नाम जपदा ते ओदे बदले सारे देवी देवते छड़ दिते ने। इस करके ऐ भाई, जिस अकाल पुरख ने, जिस रमैये ने ये दुनिया बनाई,

संसार दे अंदर बोलना है पर गुरु की मत द्वारा। हजूर गरीब नवाज साहब सचे पातशाह ने बड़ा सुंदर फरमान कीता है।